प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सकारात्मक सोच हर मुश्किल को आसान बना देती है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

0: संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सितम्बर मासस्य अष्टाविंशति नवविंशति दिनाङ्कयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलङ्घ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संप्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिंदूराभियानस्य आधारशिलां अरचयत्।
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्य प्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः अष्टोत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य सितंबर मासे दिल्ल्यां सम्भूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 26-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टम् उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः सम्प्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगितताम् अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मंत्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये संदेशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय संबंधान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मंत्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च संबंधानां दृढ़ीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20-26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रीय कृषि

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े

0: पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण एफआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
1: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण एफआईआर का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे newzoneAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
4: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और

0: अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
2: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट

0: ग्यारहवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा एस वत्स, ही इज मेंबर एंड HOD NDMA एंड श्री अमित प्रोथी, DG CDRI। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए, तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया।
2: करीब करीब 12,000 लोगों की जानें गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों की भी डेथ हुए थे, तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ ना नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ

0: को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा।
1: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से, जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया। प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में CDRI की स्थापना को जन्म दिया, CDRI का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर CDRI को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और CDRI का काम एक्चुअली में है क्या?
2: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाया जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाए कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे,
1: नॉर्मल
2: लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेज आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सके। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे 3 चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको 3 सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उसे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
1: तो एक्सपेंसेस को
2: लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
1: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही GSDMA का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए और वह विशेष व्यवस्था GSDMA गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो GSDMA की स्थापना हुई, GSDMA की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया और फिर GSDMA का एक किट, कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था, मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और ADB की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो और फिर GSDMA फिर आगे भी चला और वो अभी भी

0: की है। जीएसडीएमए के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वह भी संभव हुआ। और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वो काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
1: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया, किसी भी डिजास्टर किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लांट तरीका होता है, सीडीआरआई भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलिएंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई, पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में, तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
2: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था। जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, पर जब मैं नीचे आया 6 में से 5 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, एक बिल्डिंग शायद गिरी थी। मतलब अगर आप आसपास देखो, एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके पीछे होता है ये पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड होता है कि इस तरीके से बनाइए, आप इस रिस्क जोन में है, आपका इस टाइप का विंड स्पीड है, तो इनको महत्व देना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन सब पे अटेंशन आपको देना है। अब हमारा जो काम है वो ये भी है कि देखना है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या अभी रिस्क चेंज हो रहे हैं, साइक्लोन्स की स्पीड चेंज हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसका भी चेंज आ रहा है कि कब बारिश गिर रही है, कितनी बारिश गिर रही है, अगर हम उसको समझ सके और उसको फिर कोड एंड स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट कर सके, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का जो रिस्क है उसको समझ के बने। जो पीछे का रिस्क है वो तो हमको पता है, लेकिन जो आगे का रिस्क आने वाला है और वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्री असेसमेंट, और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं। कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड होती है, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती है, उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीजें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तरह से है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज में एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो चढ़ रहा था, जब भूकंप आया तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूँ और मैं ठीक हूँ। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की, तो वो गया नहीं टेक्स्ट, और 1.5 घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे या पुलिस को नहीं कर पाएंगे या इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे, तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सबके लिए ज्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। राइट, तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहे, वो भी हमारा काम है देखना।
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए।
0: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था, नर्मदा में जो डैम बन रहा था, तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको बनाना था, तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था, और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो उस समय मैं महाराष्ट्र में था, तो

0: वहां पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था। तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था। तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना। तब मैं वहां था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी और डैम का हाइट ऊपर गया, फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफी उसका है ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारे जगह क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी है ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम CDRI की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें CDRI का क्या रोल रहता है?
2: तो इनफैक्ट आज ही हम NDMA के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से। और बाढ़ का जो आपने बात की है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है। वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाए हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है, अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगह पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की जरूरत ना पड़े और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो बाढ़ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके है, जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है, जो इस जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पे काफी अटेंशन हमने पे करना है और NDMA के साथ हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर वत्सा, हम अभी पानी की ही बात कर रहे हैं और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे, तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशंस हैं और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशंस भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है, गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
0: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो है ना, जिसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है, उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है।

0: है ना, और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें, इसकी ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफी कम हुआ, बारिश काफी कम हुई इस साल, करीब करीब 15% का डेफिसिट था। लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसके कारण खेती पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूंगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है, टोटल जो एरिया है खेती में उसमें 4-5% जो है मैं कह सकता हूं कि उस पर असर पड़ा है। लेकिन जिस हिसाब से बारिश इस बार कम हुई उस हिसाब से खेती पर उतना असर नहीं पड़ा है। इसका कारण मुख्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जल संवर्धन पर काफी ध्यान दिया गया है, इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। पेड़ लगाने पर, पेड़ों के लगाने से भी है ना वो उर्वरता और जमीन की जो उपजाऊ संभावना है वो सब बढ़ती है। साथ साथ अभी हमने इंडिया में की ओर से भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम 12 राज्यों में शुरू किया है, जहां हम हर राज्य में 25,000 किसानों को हम मदद कर रहे हैं। जहां भी इस तरह की सूखे की स्थिति है, उस सूखे की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से हम उनके खेतों में हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सके, उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा सके, तो एक वो किसानों की ओर एक तो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरा मैं कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर सिंचन की व्यवस्था उस पर भी काफी निवेश हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं।
1: प्रति हमने पानी की बात करी, हमने बाढ़ की बात करी, अगर मैं CDRI का मॉडल समझूं, आपका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं वो समझूं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
2: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है एक्चुअली, अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है, वो फ्लड्स का ही आता है, भूकंप का भी आता है, उसके बाद फिर साइक्लोन आता है, अब गर्मी का भी शुरू हो गया है, अब
1: हीट वेव
2: लेकिन एक्सट्रीम हीट।
1: Okay.
2: अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है, 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी यू नो एसी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, बिजली की जरूरत ज्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत, तो ये सब चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी सबसे आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिजास्टर सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी की भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है उसकी, जब भूकंप आता है वो कम आते हैं लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड रेगुलरली आ रहे हैं, उनपे डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पर काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पर सोच अभी काफी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर देशों में भी इसी पे काफी फोकस आ रहा है। अब आपने यूरोप में भी देख लिया
1: गर्मी
2: बट फ्लड, स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है, एक और चीज शुरू हो गई है वाइल्ड फायर अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजेलिस में पूरा काफी शहर में भी, तो ये सब चीजों में जनरली ज्यादा अटेंशन हो रहा है। और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1 to 2 डिग्रीज वार्मर ग्लोबली में, पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहले साल उस सबसे गर्म साल था, तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज आ रहा है और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियर बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, सो ये सब चीजें हो रही हैं बट इस पे काम भी होने लग गया है काफी।
1: मिस्टर प्रति आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी SCO मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं और सारे जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है, तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई
2: है? और मैं चाहूंगा कि कृष्ण जी भी इस पर आपकी तरह बात करें, हम सब देशों ने एक सेंडाय फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है, ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे, ये ऑलरेडी है। G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे,

0: इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राजील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और सीडीआरआई को इस गर्व से मैं बोलूंगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें एस्टैब्लिश हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे। अब आगे अगले साल सेंडाई पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाई को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए, इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है। और सेंडाई का एक टारगेट है, 4 टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए ताकि अगले जो 10 साल है उस पर किस टाइप से फोकस हुआ जाए, उस पर हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे।
1: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है। एक तो जिसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है, अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफ़ी कमी आई है और काफ़ी नियंत्रण हमने किया है। जो हमारे NDRF के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज को क्रिएट कर रहे हैं, हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है तो इंडियन फोर्स की, तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है ये मैं कहूँगा। हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज हमारे पास 300 से ज़्यादा हीट एक्शन प्लान्स है पूरे देश में, कई शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं, करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहाँ हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज़्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाए हैं। तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान गया है। और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन इन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण इन सब चीज़ों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया। तो हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है। और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्यान है और इसमें ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है। और हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हम ने अप्रोच लिया है और उसी अप्रोच के तहत CDRI की भी स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज़्यादा रेजिलिएंट कर सकें, ज़्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है। तो जो भी है, जो भी प्रकल्प बन रहे हैं उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएँ। अभी देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है। तो ग्लॉफ जैसी घटनाएं जो अभी नेपाल में हुई है, तो ग्लॉफ के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लिया है अभी। तो हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं जो हिमालयन राज्यों में, सबका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, सबकी और मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ वर्षों में हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं सब में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकें।

0: सब में हम मिटिगेशन का कार्यक्रम कर सकें, सबको एक सारे लेक्स को इकट्ठा करके एक हम ऐसा नेटवर्क स्थापित कर सकें जिसके माध्यम से हम सारे लेक्स की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है कि हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखें ताकि हम आपदाओं पर हमारा एक बेहतर नियंत्रण रह सके।
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम करते हैं। बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स में आप दोनों से लेना चाहूंगी। कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आम इंसान इम्पैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पर भी क्या कोई काम हो रहा है?
0: हमारे यहाँ हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की मदद से। साइकोसोशल काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। हमने अभी सिक्किम में जब ब्लॉक हुआ था तो भी उस समय भी हम वहाँ हम गए थे और वहाँ लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था। और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज्यादा कर सकें ताकि ये सब चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया। हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए भी हम प्रयत्न कर सकें।
1: डॉक्टर,
2: हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई है ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं बट बाहर देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसे जगह को आप किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए, आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए। तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल जैसी संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं करे कि जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए। सो उस पे अटेंशन हमने फोकस ज्यादा किया है स्कूल्स पे, सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तंगी आए और जो यूज उसको कर रहा है उसको भी इन चीजों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम में ना जाए। सो इस तरीके से कोलिशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चों पे एक बहुत एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसे आप ध्यान दें, कैसे इस पे आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए। सो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं।
1: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए। बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक। आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी।
2: थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा की 11वीं संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
4: FM 103.1 MHz ಕಂಪನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೇಂದ್ರ. ಸಮಯ 9:45 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು.

0: Nagoya in Japan today. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bagged silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा।

0: और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
0: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे, ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए, तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
4: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज

0: योजनाओं के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
1: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
0: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
2: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
0: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
4: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
5: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध कर के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25

मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम पुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: स्वतंत्र वाक्य नहीं है, ये वाक्यांश है। जैसे अंग अंग मुस्कुराना, पुत्री की प्रशंसा सुनकर माता पिता अंग अंग मुस्कुराए, इसका अर्थ प्रसन्न होना। अंधे की लकड़ी, तुम इस मुहावरे का प्रयोग करो।
1: हाँ गुरुजी, मोहन माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान है।
0: अच्छा यशस, तुम कुछ प्रयोग करना चाहते हो?
2: हाँ गुरुजी, मैं प्रयोग करूंगा।
0: आंखें चुराना, इसका अर्थ बच कर रहना।
2: बच्चे अध्यापक को देखते ही आंखें चुरा कर निकल जाते हैं।
0: दोनों बहनों में 19-20 का अंतर है। इस वाक्य में 19-20 का अंतर का अर्थ क्या होगा शरण्या?
1: हाँ गुरुजी, अंतर बहुत कम, यानी बहुत कम अंतर।

0: जाते हैं।
1: दोनों बहनों में 19-20 का अंतर है। इस वाक्य में 19-20 का अंतर का अर्थ क्या होगा शरण्या?
2: हाँ गुरुजी, अंतर बहुत कम, यानी बहुत कम अंतर।
0: इन मुहावरों को मैं पढूं गुरुजी?
1: हाँ हाँ जरूर पढ़ो।
0: गर्दन झुकाना यानी लज्जित होना, 420 करना धोखा देना, गले का हार बहुत प्रिय, नाक कटना अपमानित करना, पीठ दिखाना हार कर पीछे हटना।
1: हाँ, पीठ दिखाना हार कर पीछे हटना। हिंदी भाषा में लगभग 1000 मुहावरे हैं। लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। मुहावरा एक अरबी भाषा के शब्द है। इन्हें अंग्रेजी में इडियम कहते हैं, संस्कृत भाषा में वाग्धारा कहते हैं। इन मुहावरों को पढ़ो।
2: आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना,
0: आंखें खुलना मतलब समझना,
2: कान खोलकर सुनना मतलब सावधान रहना,
0: नाक पर गुस्सा तुरंत क्रोधित होना,
2: मुंह छुपाना लज्जित होना,
0: दांतों तले उंगली दबाना चकित होना,
2: सिर फिर जाना पागल होना,
0: सिर पर भूत सवार होना धूम सवार होना,
2: बातों बनाना बहाना करना,
1: बातें बनाना बहाना करना। इदे रीति कन्नड़ा इंग्लिश भाषिया केलवु गादेगलु प्रोवर्ब्स मत्तु इडियम्स इडियमैटिक फ्रेजस लोकोक्तियां मुहावरे मुंतादुवुगळन्न ಬರಗವಣಿಗೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಷೆಯ ಕಲಾತ್ಮತೆಗಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಶೋಭೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಮುಹಾವರೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಲೋಕೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚೋ, ಹಮ್ನೆ ಆಜ್ ಅಬ್ ತಕ್ ಕ್ಯಾ ಕುಚ್ ಸೀಕಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಆಪ್ ಲೋಗೋಂಕೋ ಕುಚ್ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಚೂಂಗಿ, ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ಉತ್ತರ ಬತಾ ಸಕ್ತೆ ಹೋ?
2: हाँ गुरुजी,
0: जरूर गुरुजी।
1: लोकोक्तियां अंदरे येनो?
0: लोक में प्रचलित उक्ति। यह शब्द लोक और उक्ति शब्द से मिलकर बना है। यह स्वतंत्र वाक्य है। वाक्यों में प्रयोग करते समय इनका रूप नहीं बदलता।
1: जैसे बोया पेट बबूल का, आम कहां से होई? शरण्य, अब तुम मुहावरे के बारे में बता सकते हो? मुहावरा अंदरे येनो?
2: मुहावरा वाक्यांश होता है। इसका प्रयोग वाक्यों में होता है। जैसे मोहन माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान है।
1: आज हम इस विषय पर कुछ पाठ सीखा है। यशस और शरण्या, हम इस पाठ को यही समाप्त करेंगे।
2: धन्यवाद गुरुजी।
0: धन्यवाद गुरुजी।
3: ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ.
4: ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಇಂದು ಮಂಜುನಾಥ್, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಶರಣ್ಯ ಬಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಎಂಬಿ.
5: ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶಿಕ್ಷಾ

0: ಹೇಳಿ. सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और
1: नेहा शर्मा का
0: नमस्कार, और साथ में हेल्दी नमस्कार भी.
1: हेल्दी नमस्कार.
0: बिल्कुल हेल्दी नमस्कार यूं होता है कि भाई जब लगता है ना कि किसी ने कहा हेल्दी नमस्कार, तो हाँ हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने बारे में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए.
1: हाँ, जब हेल्थ की बात आ जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं सचेत हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या, मतलब कितना ध्यान रखना है.
0: बिल्कुल. और देखो ना, आज जो है विशेष दिन तो हमारा चल ही रहा है. बहुत सारे दिवस हैं, मैं नेहा और हमारे श्रोताओं, आज हम कथा सुधा में कहानी भी सुनेंगे और बातें होंगी अधिकार और कर्तव्य, इसके संतुलन की. साथ में हम चलेंगे कश्मीर, उसके प्रादेशिक व्यंजन के बारे में हम जानेंगे कि आज कौन कौन से हम व्यंजन करने वाले हैं. आज हम राजमा गोगची और मोदुर पुलाव, इसके बारे में बात करेंगे. और श्रोताओं के आए भी हैं संदेश, तो और कुछ विशेष दिन भी है तो उनके बारे में हम बात करते हैं. चलिए पहले सुन लेते हैं एक गीत.
1: जी बिल्कुल.

0: नेहा, हमारी सारी सखियां और हमारे श्रोता भाई समझ ही गए होंगे कि ये गीत क्यों बजाया आज, है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है। 28 सितंबर का दिन हमें उस महान क्रांतिकारी की याद दिलाता है जिसने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था।
0: बचपन से ही नेहा उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की भावना रही। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक गंभीर चिंतक और प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति और जागरूकता की नई चेतना उस वक्त जगाई थी और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी।
1: और केवल 23 वर्ष की उसकी उम्र थी उनकी जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का सामना किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश और समाज के लिए समर्पण उम्र का मोहताज नहीं होता। आज भी जब उनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में साहस, त्याग और देश प्रेम की जो भावना जागती है वो वाकई काबिले तारीफ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह सच भारत की युवा ना के अमर प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो ना, आज बहुत सारे विशेष दिन है, हम उसके बारे में भी आगे बात करते चलेंगे, बताते जाएंगे अपने साथियों को, और सब इंतजार कर रहे हैं, पता है किसका?
1: किसका?
0: कहानी यानी कथा सुधा, जिसमें हम सुनने वाले हैं अमावस की रात, इस कहानी का पहला भाग।
1: तो चलिए सुनते हैं।
2: सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा

0: सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
2: दीपावली की संध्या थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक घर रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे, भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी और एक समय ये है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग सांड अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थीं, वहां आज जंगली कबूतरों के स्वर सुनाई देते थे। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते। समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। अमावस्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरिजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरिजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते।
3: गिरिजा गिरिजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी।
2: पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थीं। मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया और उनके साथ तिवारियों का ये अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया, बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था और लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था। वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु, साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका

0: अपने अल्प जीवन समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही थीं, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा,
1: आज तो दिवाली है।
0: देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देख कर भी उसे आनंद नहीं हुआ।
2: हाँ, आज दिवाली है।
0: गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देख कर कहा,
1: आज तो दिवाली है, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे।

0: देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी।
1: ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है।

0: इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थीं, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे,
1: बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे, उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। हाँ,
0: देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वो अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं। वही अमावस्या की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें।
1: नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तनिलागीर, आपका जरासी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तिहारबाज जाफरोश गंदुम नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर और बुन से खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज्म विल जज्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान ज़ईफ़ुल बयां हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी इजाद करदा

0: अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त्य ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जहन का सकील है। अगर वर्षों की मुशायरा बाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शबे रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज बरदारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने, मेज पर हाथ पैर लटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे।
1: वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला,
2: वैद्य जी इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा आपको इस सायद की पावनी है, अब उसे आप ही बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा।
1: हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई।
3: अमावस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पहला भाग आपने सुना। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत पात्रिकर। प्रस्तुति अनुषी पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: अभी पहली कहानियां सुनते सुनते ऐसा लगता है ना कि पूरी ही हो जाएगी बात।
5: बिल्कुल, ऐसा मन तो यही करता है, लेकिन अगले सोमवार हम इसका अगला भाग सुनेंगे।
4: और भी क्या सुनेंगे?
5: एक गीत सुनेंगे
4: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: नाची गाए सबके मन बहलावा रे भैया।
4: तो दीपा जी, जश्न का माहौल तो आ ही रहा है, निकट आ रहा है, क्योंकि विविध भारती में जश्न का माहौल होने वाला है 3 अक्टूबर को, और एक आवाज का जश्न भी आज हम मना रहे हैं।
5: बिल्कुल,
4: क्योंकि आज क्या है,
5: आज देखिए लता मंगेशकर की जन्म जयंती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा नेहा जिन्होंने कभी जिनके जीवन में कोई तो पल, कोई ऐसा वक्त आया होगा जहां पे उनके गीत ने उनको छेड़ा नहीं होगा या उसका बहुत गहरा असर नहीं हुआ होगा, है ना?
4: बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे गीत हैं, इतने सारे भाव हैं उसके अंदर कि ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने, कोई भी दिन ऐसा नहीं जा सकता जब हम लता मंगेशकर की आवाज नहीं सुन पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और खासतौर से अगर हम विविध भारती सुनते हैं तो एक गाना नहीं, कई गाने हम सुनते हैं रोजाना
5: की आवाज में। बिल्कुल, और हिंदी संगीत और हिंदी सिनेमा से प्यार करने वाला शायद ही ऐसा कोई दिल भी होगा ना, जिन्होंने उनकी आवाज ने कभी छुआ ना हो किसी एक व्यक्ति के दिल को। और उनकी आवाज में प्रेम की कोमलता भी थी, विरह की कसक भी थी, भक्ति की मिठास और देशभक्ति का जोश भी रहा।
4: हाँ, और कई बार वो बच्चों की लोरियों से शुरुआत होती है, कहते हैं कि बचपन से शुरुआत हो गई उनकी आवाज के साथ और अंत तक हम उनकी आवाज के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब उम्र के हर पड़ाव में। और उनके गीतों में रिश्तों की उलझन भी हमें सुनाई देती है, तो कभी प्यार की गहराई महसूस होती है, कभी पूरे देश की आंखें उन्होंने नम की, तो कभी मन में भक्ति और शांति का भाव भी लता जी की आवाज ने जगाया है।
5: बिल्कुल, और लता जी ने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने भावनाओं को आवाज दी नेहा। उनकी आवाज कई पीढ़ियों की यादों में, प्रेम में, और हमारे जो पसंदीदा गानों की जो प्लेलिस्ट होती है ना, उसमें एक गाना तो जरूर लता जी का रहता होगा। आप भी श्रोताओं जरूर बताइएगा, क्या आपके प्लेलिस्ट में उनका गाना नहीं रहता?
4: अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूछने की बात नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जैसे इससे ठीक पहले जब हम एक कार्यक्रम कर रहे थे उसमें भी जब बातें आ रही थी तो ये हो रहा था कि ये गीत तो रह गया, तो फिर हमारी श्रोताओं ने भी एक कहा और हमने भी यही कहा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक घंटे में पूरा करना तो वैसे ही मुश्किल है, एक दिन में पूरा करना भी मुश्किल है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है।
5: बिल्कुल, और जब अपने ये कार्यक्रम सखी सहेली के लिए जब गानों की

0: नाम हम लोग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था इस गाने को ले या इस गाने को ले,
1: हाँ।
0: क्योंकि इतनी लंबी जो फहरिस्त है उनके गानों की, तो बस कुछ ही गाने हम तो यहाँ ले पाए, लेकिन आज आप दिन भर उनके गानों का आनंद लेते रहिए।
1: हाँ, विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों में आनंद आज तो लेंगे ही और बाकी दिनों भी लेते हैं, जैसे कि हमने कहा 365 दिन उनके गीतों का हम आनंद लेते हैं, इससे तो कोई अंतराल हमें मिलता नहीं, लेकिन कार्यक्रम में अंतराल का वक्त है।
0: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद हम आ चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली।
0: और इतनी सारी बातें हो गई लता जी की और गीत नहीं सुना उनका,
1: तो सुनेंगे अभी,
0: चलो सुनते हैं।
1: हाँ

0: दीपा जी, गाना तो अच्छा था, लेकिन आपने मेरी पसंद का गाना क्यों नहीं बजाया?
1: अरे भाई देखो, इस गाने में तुम्हारा नाम था। हाँ? नहीं, वो वाला लाइन तुमने सुनी, इस गाने की पंक्ति, जब से सैया तो उसे नेहा लागे, पीछे पीछे मैं तू आगे आगे, तुम्हें तो आगे रखा है।
0: हाँ, इसी वजह से मैंने आगे आगे गाना सुन लिया वो पूरा, लेकिन और भी एक अच्छे अच्छे गाने हैं मेरी पसंद के।
1: भाई नेहा, तुम्हारे पसंद का गाना इस प्लेलिस्ट में है, कैसे भूल सकती हूँ?
0: भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन भूल ये भी नहीं सकते हैं कि आज बहुत सारे दिवस भी हैं और एक बहुत ही खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना पहुंच दिवस, जो 28 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है?
1: इस दिन को, इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को, मतलब सभी को, आवश्यक और विश्वसनीय जानकारी आसानी से उन तक पहुंच सके।
0: और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत हुई 2019 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। और अब जब हम डिजिटल युग में है और सूचना फटाफट हम तक पहुँचती है, पहले से आसानी से सूचनाएं हम तक पहुँचती है, लेकिन गलत सूचनाएं भी उतनी ही जल्दी हम तक पहुंच जाती है। तो ये बात बहुत बड़ी चुनौती है।
1: इसलिए ये दिवस हमें समझाता है कि सही सूचना व्यक्ति को जागरूक बनाती है और जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। तो भाई, जब बात इतनी सूचनाओं की हो रही है, तो चलिए एक सूचना ये भी दे देते हैं अपने सभी श्रोताओं को।
2: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
3: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
2: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ,
2: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
1: नेहा, बात जब संदेशों की हो रही है और जानकारियों की हो रही है, तो हमें अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज विश्व रेबीज दिवस भी है।
0: बिल्कुल, और ये हर साल जैसे कि कह सकते हैं आज के दिन यानी 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि रेबीज जो है बीमारी, वो उसके प्रति जागरूकता फैले, इस जानलेवा बीमारी के बचाव के उपायों की जानकारी का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये।
1: और महत्व ये है इस दिवस का कि सही समय पर उपचार और टीकाकरण से रेबीज से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है, इसलिए सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, विश्व रेबीज दिवस की शुरुआत तो साल 2007 में हुई थी, और ये दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज को रोकने के लिए पहला सफल टीका विकसित किया था।
1: और रेबीज जो खास तौर पे संक्रमित जानवरों के काटने से या उनकी लार के संपर्क से फैलता है, और श्वान इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत है।
0: तो यदि कोई जानवर अगर आपको काट देता है, आमतौर पर जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो तो घाव को तुरंत आप साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह से धोइए, और बिना देर किए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है आपका।
1: बिल्कुल,
0: और इस दिन का संदेश है जागरूकता, समय पर उपचार और पशुओं का टीकाकरण ही रेबीज से बचाव की कुंजी है। तो अगर आप पालतू जानवर रखते हैं अपने आसपास, तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भी समय समय पर टीकाकरण कराएं। उनका भी टीकाकरण होता है, उनकी भी देखभाल आपको उसी तरह से रखनी जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और भाई ये भी जरूरी है कि एक और गीत जो कि नेहा की प्लेलिस्ट में है और हमने वहां से चुरा कर यहाँ पे अपने श्रोताओं के लिए चुन लिया है।

0: दीपा जी देखिए, मेरी पसंद का गाना सुनना मेरा अधिकार होता है।
1: भाई नेहा छोटी है, हम बड़े हैं, तो हमारा भी तो ये कर्तव्य है कि जो नेहा की चाह हो और अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, है ना सखी।
0: लेकिन अधिकार और कर्तव्य का संतुलन भी तो होना चाहिए ना दीपा जी।
1: ये बात तो सही है। अब अगली बार अगर मैंने कुछ मांगा तो दोगी?
0: हाँ, सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य बन रहा है या नहीं।
1: जी। लेकिन हाँ, हमेशा हम इस तरह से नहीं चल सकते कि अच्छा ये अधिकार है या कर्तव्य है, तो वो इक्वेशन हमेशा दिमाग में नहीं बना सकते, है ना।
0: क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य, और हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, पर ये भी समझना चाहिए कि हर अधिकार के साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल। और अपने अधिकारों के लिए हम जितना जागरूक रहते हैं ना नेहा, दूसरों के अधिकारों का भी हमें सम्मान उतना करना चाहिए। हमें अपने बारे में तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। और जिस तरह हमें अपने सम्मान या स्वतंत्रता या समानता हमें चाहिए, उसी तरह से ये अधिकार दूसरों को भी मिलना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखो हमने ध्यान रखा ना, तुम्हारी पसंद का गाना बजा दिया।
0: बिल्कुल। और असली शुरुआत तो परिवार से ही होती है ना, क्योंकि घर में हम अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की भावनाओं और विचारों को सुनना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो स्वतंत्रता अगर हमें मिली तो उसका अर्थ ये नहीं कि

0: मनमानी हम करें, हमें अपनी पसंद से और पसंद से अपना निर्णय लेने की आजादी तो मिलती है, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और सिर्फ परिवार में ही नहीं, नेहा, ये हमारे आसपास हो या समाज हो या बड़े तौर पे बात करें तो देश, सब जगह ये बात लागू होती है, जैसे जैसे मतलब जैसे हर जगह हर स्थिति में हम इसे देख सकते हैं।
0: जैसे कि सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है हर नागरिक का। हमें सुरक्षित चलने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यानी हमने अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फास्ट चलाएंगे, या हम पैदल चल रहे तो मतलब ये नहीं है कि किसी भी दिशा में कभी भी कहीं से भी चलने लगेंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नियमों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
1: और इसी तरह से बात आती है अगर वातावरण की, तो स्वच्छ वातावरण अगर हम चाहते हैं, हमारा अधिकार है, और हम इस बात के लिए कई बार ये बात उठाते भी हैं, तो स्वच्छता बनाना हमारा, बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। हम साफ सुथरी सड़कें रखें, जो पब्लिक प्लेसेस होती है वो चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी हो, तो हमें ही ध्यान रखना होगा कि हम कूड़ा इधर उधर कहीं ना फेंकें, कचरा यहीं यहां वहां ना डालने, न तो खुद डालें न दूसरों को डालने दें।
0: बिल्कुल, और प्रकृति से जो संसाधन हमें मिलते हैं उस पर भी हमारा अधिकार है, लेकिन उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पानी, बिजली और पेड़ों का सोच समझ कर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी कुछ बचा कर रखें। ये तो खत्म होने वाले संसाधन है।
1: और जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया, तो उस पर भी हम अधिकार और संतुलन का, अधिकार और कर्तव्य का संतुलन हम रख सकते हैं। कैसे? कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के साथ ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि कोई झूठी बात है या कोई ऐसी किसी का अपमान ना हो जाए, या कोई ऐसे बोल ना हो, कड़े बोल इस तरह के ना हो कि किसी की प्राइवेसी या किसी की निजता पे नुकसान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए।
0: भले ही वो आपकी अपनी वॉल है, आप कह सकते हैं हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आपका कर्तव्य है
1: जी।
0: अब आप उसे पालन करें ना करें वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। वैसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना उनका कर्तव्य है। माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों के साथ साथ उनको जिम्मेदारियों का महत्व भी वो समझाते जाएं।
1: बिल्कुल, और अधिकार मांगते समय दूसरों की जो सीमाएं हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह हमने उठा के कह दिया ये तो मेरा फर्ज है, अधिकार है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। परिवार हो या कोई कार्यस्थल हो या समाज हो, आपसी समझ और संवाद से ही संतुलन हम कायम रख सकते हैं, है ना।
0: हाँ, छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब मिलती हैं तो बड़े बड़े बदलाव भी आते हैं। और हम अपनी, जैसे कि हम एक लाइन में खड़े होकर, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करें, छोटे छोटे काम जो है समाज में अनुशासन तो बढ़ाते हैं और साथ में हमारे अंदर संवेदनशीलता भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अधिकार देखो हमें सशक्त तो बनाते ही हैं और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। और जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने जो कर्तव्य हैं उनको समझते हैं, तभी परिवार हो या समाज हो, देश हो, तो हम सच्चा संतुलन और अपने लिए एक बेहतर जीवन तभी संभव कर सकते हैं।
0: और सच्चा संतुलन तो यही है कि जब हम बातें करते रहते हैं तो बीच बीच में गीत भी चलाते रहते हैं।
1: तुम्हारी आंखों में क्या लिखा है सब समझ में आ रहा है मुझे।

0: भाई लिखा तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत से संदेश है। हमारे साथियों ने लिखा है कि अधिकार के लिए तो कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए हैं, लेकिन जहाँ कर्तव्य निभाने की बात आती है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगते हैं।
1: और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये दोनों जो रूप है वो अविभाज्य है। अधिकारों के बिना कर्तव्य निरर्थक हो जाते हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता को जन्म दे सकते हैं। इसलिए अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी ने अपने अधिकारों का किस तरह से पालन किया है बता रहे हैं कि राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, अपना घर तो अपना घर, पड़ोसियों के यहाँ भी बने तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं कि पहले मुझे खिलाते हैं और बाद में वो सभी खाते हैं और मैं भी उनके बनाए राजमा चावल की तारीफ करने से नहीं थकता। वैसे पंजाबी परिवारों का व्यंजन माना जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, हम बड़े चाव से खाते हैं। वही एक साथी है वो कह रहे हैं कि कश्मीर के व्यंजन झारखंड में ना के बराबर बनते हैं। तो सखी सहेली में व्यंजनों को सुन रही हूँ तो कश्मीर के व्यंजनों में रुचि पैदा हो गई है। खासकर पिछली बार पनीर की सब्जी सुनी थी बिना प्याज लहसुन और टमाटर वाली, उसके बाद से कश्मीरी व्यंजनों में बहुत रुचि पैदा हो रही है, तो इसका इंतजार रहेगा। तो इंतजार खत्म करें।
1: चलिए तो पहले कौन से वाली रेसिपी बताए, राजमा गोगची या
0: राजमा में तो टाइम लगता है बनने में, पुलाव बना लेते हैं पहले।
1: चलो तो ठीक है, पहले पुलाव बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना है, बासमती लेना है 1 कप, जो कि तिकल लगभग 30 मिनट पानी में भिगोया हुआ हो। देसी घी लेना है 2 बड़े चम्मच, चीनी या मिश्री आधा से 1 कप, जैसे आपके घर में मिठास पसंद हो वैसे, और केसर के कुछ आपको धागे लेने हैं 1 छोटा चम्मच के करीब, और बल्कि उससे थोड़ा कम ही लग जाएगा। और खड़े मसाले यानी कि 4 हरी खड़ी बड़ी वाली हरी इलायची लेनी है, बड़ी वाली भी लेनी है, 3-4 लौंग, 1-2 दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज पत्ता, सूखे मेवे जो आपके घर में हो और जो आपके वहाँ पसंद हो वो ले लीजिए। अब बनाना कैसे है इसको, कि बासमती चावल को अच्छी तरह से आपने धो लिया, 30 से 45 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया, फिर इसको छान लीजिए बहुत अच्छे से। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गरम करें, उसमें कटे हुए जो काट लीजिएगा सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे काट लीजिएगा, उन सबको आप हल्के से सुनहरे होने तक भून लीजिए। हाँ, इन सब ड्राई फ्रूट्स में किशमिश को आप अलग रख दीजिएगा। और बचे हुए घी में अब हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता डालें, इसके बाद 2 कप पानी डालें और वो जो केसर वाला जो आपने भिगा के रखे थे केसर के धागे
0: दूध
1: वो
0: में,
1: हाँ दूध में वो भी डालना है। अब पानी में उबाल आने के बाद फिर धीमी आंच करके इसमें चीनी मिलाइए और घुलने दीजिए। इसके बाद भीगे हुए चावल और भुने हुए सूखे मेवे जो आपने लिए थे वो डालना है। पैन को ढक कर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल सारा पानी सोख न ले और अच्छी तरह इसको आपको पका लेना है। और फिर बाद में आप देखिए इसके ऊपर आप चाहें तो सजाना है तो केसर की पत्तियों के साथ और सूखे मेवे के साथ कर सकते हैं। ये जो केसर या भात जो कहते हैं घरों में बनता है ये उसी तरीके का ही है।
0: तो फिर राजमा गोगोची की रेसिपी भी बता दे जो इसके साथ खानी है। इसके लिए हमें राजमा चाहिए, सूखी गोगोची, गोगोची यानी गुच्छे वाले में जो मशरूम होते हैं उनको कहते हैं, और दही चाहिए आवश्यकता के अनुसार, और साथ में चाहिए सौंफ पाउडर, सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ, जीरा, हींग, नमक, तेल या घी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को भिगोकर अच्छी तरह से पकाया जाता है, फिर सूखी गोगोची को साफ करके पानी में भिगोया जाता है और इसके बाद मसालों का आप तड़का लगाइए। राजमा और गोगोची को धीमी आंच पर पकाइए धीरे धीरे, और धीमी आंच पर जब आप पकाते हैं तो मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह हमें भी मिलती है और साथ में इससे व्यंजन का स्वाद भी गहरा हो जाता है। और फिर इसके बाद आप इसको खाइए चावल या कश्मीरी शैली के पुलाव के साथ, जो कि हमने बना ही लिया है, तो बस उसके साथ हम खा लेंगे मधुर पुलाव के साथ, है ना।
1: तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट खाली हो गया है ना, खुशबूदार। हाँ। मतलब बना नहीं है लेकिन फिर भी
0: खुशबू आने लगी है। अब इतनी सारी बातें इलायची और सब चीजें की हो गई है तो ऐसे खुशबू तो आएगी, केसर की भी आ रही है,
1: और देखते हैं इस अगले गीत की खुशबू कैसी है।
0: हाँ?

0: जी हाँ, लता जी की आवाज और उनके गाए गीतों से हमें भी उतना ही प्यार है ना।
1: और हमारे सभी साथियों ने भी यही लिखा है कि एक ही प्रोग्राम में सारे गाने आना भी मुश्किल है और हर गाना पसंदीदा है, लेकिन हम हमेशा हार जाते हैं समय से, क्योंकि समय बीत जाता है और हमें जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो आज के इस कार्यक्रम से भी लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की

0: डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: एनुअली वी हैव बीन मीटिंग रेगुलरली।
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
3: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
5: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
6: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
5: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
7: So if you want to make more export,
8: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत

0: को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की

0: कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
2: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
1: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
2: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित, विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
3: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाइयों, सारथी भाइयों से कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई।
2: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनु एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में

0: नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू घुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency, aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals in men's javelin throw. Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump. Gulveer Singh in 1500-meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said at the same time the government declared Shehzad Bhatti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act. Mr. Shah also launched a new extradition portal which will synergize and expedite the efforts to bring back fugitives from abroad. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said, India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from 800

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
1: 2026 आईजी नगोया।
2: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के सातवें स्थान पर रहे, तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल

0: निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली चौथे स्थान पर रही तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुँच गयी, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गयी। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुँचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट आउट जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट आउट में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट आउट तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यही खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर है। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: गोइंग टू द कुराश एरिना वेयर पिंकी बलहारा हैज सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स अंडर 78 किलोग्राम कैटेगरी। पिंकी वॉज इन एक्शन इन द सेमीफाइनल टुडे अगेंस्ट साउथ कोरियाज मू सुमिन एंड द बाउट एंडेड 5-0 इन द फेवर ऑफ द Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की सुआंग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5

0: शून्य से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दे, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Corey as Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shootout. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान मनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार

0: हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
1: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
0: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
0: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
1: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासू ने पुरुषों के शॉर्ट बोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
0: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत एकता थामी।
1: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
0: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
0: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में 3-3 भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे।

0: में कई भारतीय हैं स्किप और डिंग की स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: ಇದುವರೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಸಮಯ 10:20. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಆರಂಭ. ಗೀತ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಮೆಲೋಡಿ ಟೈಮ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಂಕರ್ ಮಹದೇವನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆ.